Big 106.2, The Beat of Bollywood. आप सुन रहे हैं Big 106.2, The Beat of Bollywood.

वही पुरानी नई कहानी, बचपन से जवानी। देखे थे पहले जवानी में सपने, देखोगी सपनों में अब तुम जवानी।

0: बोलो।
1: ये रास्ता जरा सा नया है तमन्ना, जरा देख लेना कि रुकना कहाँ है और चलना कहाँ है, कहाँ लड़खड़ाना समझना कहाँ।

खोने और पाने के बीच पल भर का फासला है। इनकार मत करो, आगे बढ़ो, थाम लो उसका हाथ, वरना तुम्हारा इनकार मेरा इंतजार बन जाएगा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ प्यार के इस मोड़ के आगे क्या है। आगे बढ़ो।

और पाने के बीच पल भर का फासला है। इनकार मत करो, आगे बढ़ो, थाम लो उसका हाथ, वरना तुम्हारा इनकार मेरा इंतजार बन जाएगा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, देखना चाहता हूं प्यार के इस मोड़ के आगे क्या है। आगे बढ़ो।

मुंबई। सुना था यहाँ आदमी पूरी जिंदगी अपनी किस्मत स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक लाने में निकाल देता है, पर ढाई घंटे में मेरी किस्मत ऐसे स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सजा मजा बन जाएगी, ये भी कभी सोचा नहीं था। लास्ट लोकल क्या छुट्टी, साला किस्मत पटरी पर आ गई।

0: कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सही कहते हैं।
1: The Big Weekender. Hold tight for 4 hours of the biggest Bollywood hits.
2: All weekend long.
1: Big 106.2.

तुम्हें नाम दिया है मैंने एक, तुम्हें शक्ल दे रहा हूं मैं अब, मासूम नजर, भोला चेहरा, हंसते हुए लब। एक शब्द हो तुम, कोई सच हो तुम, या उलझा हुआ ख्याल हो, फिलहाल तुम एक सवाल हो।

जिसकी तस्वीर निगाहों ने तस्वीर में देखे रंग गई, रंगों में मौसम बहार का, तेरी जीत का, मेरी हार का, इनकार का, इंतजार का, इकरार का, तकरार का, फीका सा एक रंग प्यार का।

0: वापस जाना पड़ा राहुल तेवतिया को. फैंस आर डिसअपॉइंटेड. होम ग्राउंड गुजरात टाइटंस का अहमदाबाद में ये मैच हो रहा है. 7 रन बना पाए तेवतिया 5 गेंदों के सामना करने के बाद. जेसन होल्डर विल नाउ हैव टू कम बैक. आई डोंट थिंक दे कैन होल्ड हिम बैक एनी लॉन्गर बिकॉज अब उनके बाद उसके बाद सिर्फ बॉलर्स बचे हैं बैटिंग करने के लिए. एंड एज यू वर सेइंग नील दे हैव अ वेरी गुड बॉलिंग लाइन अप गुजरात टाइटंस. देर इज रबाडा, देर इज सिराज एंड देन ऑल्सो इन द मिडल ओवर्स दे हैव सम गुड ऑप्शंस. तो मुझे लगता है कि एक कोशिश ज़रूर करेंगे, फाइट ज़रूर करेंगे. हालांकि आरसीबी के पास भी विराट कोहली एंड देन दे हैव पाटीदार हु हैज़ बीन इन फॉर्म एज वेल. तो उनके पास भी बैटिंग लाइनअप तो अच्छा है. बट आई थिंक दिस बीइंग अ फाइनल एंड यू नेवर नो इन अ हाई प्रेशर गेम फाइनल में कुछ भी हो सकता है. वी हैव सीन फ्रॉम 1983 ऑनवर्ड्स जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था एक लो स्कोरिंग फाइनल में. तो फाइनल में क्योंकि प्रेशर होता है लो स्कोरिंग गेम का भी यू कैन मेक अ मैच आउट ऑफ इट. बट आई थिंक दे विल हैव टू बैक themselves अप टू डू इट. दे विल हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि इवन इफ देयर इज नॉट टू मेनी रन्स ऑन द बोर्ड वी स्टिल कैन पुल इट थ्रू.
1: यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ एन सेल्फ कॉन्फिडेंस. Astra Sixalandar comes in. Jason Holder driving the first one beautifully towards long off. Has to be a perfect drive.
2: The perfect drive.
3: Brought to you by Trade 24/7. Trade smarter, trade better.
1: Rasik Salandar has relied on the cross seam deliveries. And somewhere I felt that the thought was right with mid-on inside the circle. You can always back yourself to go over the mid-on fielder to try and get a boundary. But the problem over there was that cross-seam delivery. When you bowl that cross-seam delivery, if the ball hits the belly on the pitch, the ball will stay a tad low. And that's exactly what happened. The ball staying a tad low hit the bottom edge of the bat of Tevatia and ended up becoming a very comfortable catch for Rajat Patidar, back pedaling, taking that catch. 117 for 6 now and 16.3. This is what happens on a surface like this where there is duality in the bounce. Some balls will come on to you, rise very sharp, and some will stay low. You need to know how to extract off-pace deliveries, vary the length, try and bowl some cross-seam deliveries. As Rasikdar, another delivery to Jason Holder, playing it towards the point. There is Romario Shepherd who will pick up the ball, send it back, and the batters will cross for the one run.
3: The one run with Danube Properties, your one and only home at Greens by Danube. Fully furnished townhouses and villas by Danube Properties.
0: Rasik Salamdar ne 18 wicket is season mein liye hain IPL ke. और उनके स्टैट्स मैं देख रहा था, कोई शायद ही ऐसे एक या दो मैच हैं जिसमें उनको विकेट ना मिला हो. उसके अलावा इन एवरी मैच ही हैज़ टेकन विकेट्स. इनफैक्ट ही हैज़ टेकन 4 विकेट्स इन वन ऑफ द गेम्स. ही हैज़ हैड अ प्रीटी सक्सेसफुल सीजन फॉर आरसीबी. अगली गेंद इस बार स्टंप्स पर थी, इसको किया है ऑफ द हिप्स, थोड़ा सा टक किया टूवर्ड्स द स्क्वेयर लेग रीजन. 2 रन तेज़ी से वाशिंगटन सुंदर ने लिए, 31 रन उनका स्कोर पहुँच गया. 27 गेंदों का उन्होंने सामना किया है. He's been the one who's been trying to rebuild this innings but has been falling short of partners. Unko koi saath dusre end par mila nahi hai. RCB ke is season mein sabse zyada wicket liye hain Bhuvneshwar Kumar ne 27 wicket. Second number par hain Rasik Dar jinhone liye hain 18 wicket. Agli gain around the wicket is bar stumps par ki hui gain seedhe balle se isko khela. Bahut badhiya ye ball thi Rasik Salamdar ki. Is ball ko hum bolenge a super delivery.
2: Super delivery.
3: Brought to you by Papa John's. Better ingredients, better pizza.
0: 121 for the loss of 6 wickets after 17, Gujarat Titans.
3: Big 106.2.
2: Ball by ball.
3: Brought to you by Zulekha Hospital. Your health matters. Tanishq. Shop from a store or shop online at tanishq.ae.
4: Drive bigger. Drive smarter. Discover the future of driving at your nearest GWM showroom today.
5: Greens by Danube. Premium townhouses and villas starting from 3.5 million dirhams. Prime location, high appreciation. Visit danubeproperties.com.
6: Trade 24/7 gives UAE traders access to global markets with instant deposits and withdrawals, low spreads and real-time insights.